एक सही तारी प्रेमी तख्त पोछते बैठे, हाथ उच माला पड़ी रह राज दा पाठ पिया कर दे। इसका लड़का बाहरों भटकदा भटकदा आया, अपने पिता नूं पाठ करदा देखिया तां कोल बैठ गया। पिता ने पाठ किया, पुत्र ने सुनिया, अरदास कीती, पुत्र ने वह भी सुनी। अरदास तो बाद ए लड़का पुछदा है पिता जी।

के सुन के लड़का कहन लगा, पिता जी मैं ते एवें बाहर भटकदा रहा, मन नूं शांति नहीं मिली, अज ये बाणी सुनी मन टिक गया। जिस गुरु की बाणी विच इन्ना आनंद है, जे कदी सुगुरु दे दर्शन हो जान ता पता नहीं किन्ना क आनंद प्राप्त होवेगा। पिता जी ओ गुरु किथे? मेरा चित करदा है कि मैं उस गुरु दे दर्शन करा। पिता खुश होया कि मेरे पुत्र दा ध्यान गुरु

मेरे वालों गुरु दे चरना ते रख के मथा टेकी आखी पातशाह हथां दी मैल है इस नु सफला करो 500 रुपया इस लड़के ने अपने वालों भेटा धरन वास्ते जेब च पा लिया समान लिया धर्मशाला जा पहुंचिया संगत सारी जुड़ी है जान तो पहला सारी संगत ने अरदास की सारे अरदास की अकलगी तरपाख्या आप दे दर्शना वास्ते असी सारे इस उज्जैन शहर तू तुरन लगे हैं कृपा करनी साड़ी यात्रा सुखां दे नाल संपूर्ण होवे आप दे दर्शन प्राप्त हो अरदास करके शब्द पढ़ दे ए सारे लोग ए सारी

गुरु साहब के चौंकड़ा मार के बैठे होंगे, उन्हां दियां अखां बंद होंगियां, गुरु साहब की समाधि लगी होवेगी, मैं जाके बुलावांगा तां वी उन्हां दी समाधि नहीं खुलनी, उन्हां दा दरबार बड़ा वड्डा होवेगा, बड़ी संगत बैठी होवेगी, बड़ी सोभा होवेगी, क्योंकि वैष्णव साधुओं की संगत करया करदा सी, जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे, बड़ी संगत बैठी होवेगी, बड़ी सोभा होवेगी, क्योंकि वैष्णव साधुओं की संगत करया करदा सी, जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे, और उसे तरह ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे सोचदा संगत दे नाल तुर

झाड़ू फेरिया लंगर विच भांडे मांजे गुरु दियां कथा कहानियां सिखां कोल सुनिया मन भिज गया। एक दिन कलगीधर पातशाह इकले बैठे सन। इरसाईधारी लड़का गुरु साहिबां दे कोल गया। 100 रुपया पिता वाला, 500 रुपया अपने कोलों गुरु साहिबां दे चरणां ते रख के मथा टेकिया। नाले के पातशाह, हथां दी मैल है, इस नूं सफली करो, कुछ बख्शिश करो, छुट्टियां दिओ तां कि वापस घर जावां। गुरु साहिब जी बड़े प्रसन्न होए, कड़ा प्रसाद दिता, आख्या ये साडे वल्लों अपने

इस कड़े दा अदब रखी, जो मंगेगा वो तेनू मिलेगा। ए बख्शिशा लैके खुशी खुशी आनंदपुर साहब तू तुर पिया, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है। पर जदों आनंदपुर साहब तू बाहर निकलिया ते सारा आनंद गुआच गया। माया वाली बिरती फिर जाग पई, कह लगा मना बहुत माड़ा कीता, 600 रुपया रोड़ के आ गई, एकड़ा प्रसाद दिता है जिहड़ा पिता घर रोज बनांदा, ए सर्वलोह दा कड़ा दिता नाले वचन दिता। कहंदे ने जो मंगेगा तेनू मिलेगा, पर जिस कड़े दी अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हें मैनू 1000 रुपए कित्थों दे देने। बड़ा उदास हो गया, मुंह लटकाए ते तुरदा तुरदा चमकौर साहब जा।

बाजार विचों लंघ रहे है पर बड़ा उदास। एक गुरु का सिख ध्यान सिंह माजरी है बाजार विच खलोता सी। इसन बाहों फड़ के घर लै गए है जल पानी नाल सेवा की थी। ध्यान सिंह कहन लगा भाई लगदा आया गुरु की नगरी तो पर उदास बड़े। गुरु दे घरों जिहड़ा भी आंदा है उहदा चेहरा खिड़िया हुंदा पर तू उदास है की गल। कहन लगा सिखा की दसा उजैन तू गया तीन महीने सेवा की थी 600 रुपया रख के गुरु नूं मत्था टेकिया टेके आ कुछ बख्शिश करो एकड़ा दिता है जेड़ा मेरा पिता घर रोज बनांदा एक लोहे का कड़ा ते बचन दिता है। कहंदे सी जो मंगेगा मिलेगा पर सिखा तू दस जिस कड़े की कीमत अपनी चार आने नहीं उन्हें मैनू की देना। ये गल सुन के ध्यान सिंह उथों उठे घरवाली को आ गए। ध्यान सिंह घरवाली नूं कहन लगा भलीए लोके एक मूर्ख सिख आया उन्नू की पता कि गुरु का वचन की हुंदा है। जे तू मेरे नाल सहमत होवे माया का लालची 600 ते 5 रुपये वध दे के गुरु का वचन ते कड़ा असी उहदे कोल लै ली। घरवाली ने कहा स्वामी जी बाजार जाइए एक रुपए की एक मण कणक आंदी उस कणक नूं घर लिया के साफ करन लगे हां एक दाणा चुकीए दूसरे पासे रखिए ते आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु फिर एक दाणा चुकीए फिर आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु। एक मण कणक विच जिन्ने दाणे ने सारिया ते वाहिगुरु वाहिगुरु कह के वह कणक साफ करिए उस कणक नूं फिर बाजार लै जाइए वेचण वास्ते तां बाणीए ने उहदा मुल एक रुपया ही पाणा पर जे वह कणक जिहदे ते सिमरन करके साफ कीती गई है वह कणक गुरु घर लै जाइए ते गुरु नानक तुठ के अपने सेवक नूं अपनी जगह दे देंदा है इन्ना गुरु दयाल हो जांदा है। गहने ला दिते गहने वेच के इन्नू पैसे दिओ इन्नू की पता कि गुरु का वचन की हुंदा है 605 रुपया जेब विच पा के ध्यान सिंह माजरिया फिर उस लड़के दे कोल

फिर आया पिता को, पिताजी मैनू गुरुकुल बख्शवा दियो। पिता इन्हां दी माता ते ए लड़का चमकौर सौ पहुंची, ध्यान सिंह नू नाल लैके के तू गुरुकुल सानू बख्शवा दे आनंदपुर साहब जा पहुंचे। तीन दिन सेवा कीती, चौथे दिन इस लड़के दा पिता गुरु साहिबां दे कोल पहुंचिया, बेनती कीती कि खिमा करो मेरा लड़का भुल गया, उन्हें आप दा बचन वेचिया। साहब जी कहन लगे बिशंबरदास घबरा ना, तेरा ते साडा बड़ा पुराना संबंध है। गुरु नानक साहब उजैन गए सन ता तुहाडे वड़के नानू ने कहा सी फिर कदू दर्शन दियोगे, ता गुरु नानक साहब ने कहा सी दसवें जामे विच मिलांगे। तो दसवें जामे विच असी आए हां, तुहाडा साडा मेल होना सी होया है, कल दीवान तो बाद आयो जो मंगोगे तुहानू मिलेगा। अगले दिन सारे जने इकट्ठे होए, साहब जी कहन लगे ध्यान सिंह तू गुरु दा बचन ले तेनू कुछ मिले है। ध्यान सिंह ने हाथ जोड़ ले, कहन लगा पातशाह जो मेनू मिले है मैं दस नहीं सकता, गुरु अर्जन साहब दा शब्द है पढ़ के सुनाना इन्ना कुछ मेनू मिल गया है। ता शब्द पढ़े गुरु के बचन मोहि परम गत पाई, ए शब्द आप सुन चुके हो कि गुरु दे बचन द्वारा की प्राप्त होंदा है। माया भी मिली हलवान गया, मोरां दा भांडा लभा, जमीन भी लै ली मकान भी बना ले, सब कुछ मिल गया। ते जदों इस लड़के हरगोपाल दास ने सुनिया कि गुरु दे बचन विच ता बहुत कुछ है, ता रोण लग पिया। ता गुरु साहब ने कहा भाई रोवो ना, घर जाओगे, घर जाके बस्तर छाद के पांच सिखां नूं घर बुला के प्रसाद छकायो, कड़ा प्रसादी देख तैयार करियो, आनंद साहब दा पाठ करियो, जो मंगोगे उस वक्त अरदास विच उह तुहानूं प्राप्त होवेगा। गुरु दी वड्याई करदे वापस उजैन पहुंचे, जो मंगया वो गुरु ने फिर बख्शिश कीता, सारे दुख दूर हो गए, सुख जड़े सन उन्हां नाल फिर घर भर गया। ते गुरु साहब जी का शब्द है भाई गुरु का वचन की है, जो आपा गुरु की बाणी पढ़ते गुरु के बचन नूं मन्नांगे, गुरु के बचन की कमाई करांगे, तां साडा जीवन सुखां दे नाल भर जाएगा। जे गुरु दे बचन दी सार नहीं लवांगे ते फिर भाई दुखी होवांगे।

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है,

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं हुलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें उह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणां विच उड़ारी लांदा है।

संत बन गए। जिन्हें इस कहानी नूं समझिया ने बेशक उन्हां भगती कीती, सिमरन कीता, पर वो किसे मंजिल ते पहुंच न सके। इस वास्ते देखदे हां कि कई बारी बहुता सिमरन करन वाला, बहुता मंदिर मसीत गुरुद्वारे जाण वाला भी दुबदा दा भरिया हुंदा, क्योंकि गया ते है मंदिर मसीत गुरुद्वारे, पर मन विचों दुबदा ना कट सके है, क्योंकि पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। हिरदे विच नाम नहीं वसया, प्रकाश नहीं होया, क्योंकि जिहड़ा प्रकाश है परमेश्वर का, वह ते दुबदा दूर कर देंदा है। जिहाली मन विच दुबदा है ते समझो कि बेशक नाम जपदा है, पर अंदर हालिए दे नाम वसया नहीं। और ये परमात्मा दे मेल दी अवस्था जद हो जाए तो फिर इंसान दी हालत की होंदी है। भगत नामदेव जी सानू अपने शब्द द्वारा

वचार दी है। जद परमेश्वर दा नाम अंदर वस जावेगा, परमेश्वर दे नाम दा ढोल वजेगा, तो फिर जिहड़े विकार ने ये अंदरों भज जाने। ढोल वजे तो छोटे मोटे खड़ाक सुनाई नहीं देंदे, परमेश्वर दे नाम दा ढोल अंदर वजेगा तो विकार दुबदा ईरखा ये भज जाएगी। बिन सावन कन हर गाजे, परमेश्वर दा नाम वसेगा ते अंदर बरसात होवेगी, केड़ी नाम दी बरसात। बादल बिन बरखा हुई नाम दी बरसात वास्ते बदलां दी लोड़ नहीं पैंदी। जो तत बिचारे कोई, भगत नामदेव जी कह रहे ने, अगर इस

मैं सिमरन करके गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखा का नाश होंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव का मिलाप हो जाता है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर का नूर है ओ दी जो

मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहा है, जिद कोल एक चीज है उसनू दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा होवे अंधेरे विच हुंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा अपनी सुख वास्ते दूसरे का हक खाना दूसरे नु दुख देना यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहेगुरु है जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

पानी टिक्या रहेगा, जे पानी नो धरती से डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह साहब जी फरमाते हैं, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है, और ज्ञान गुरु तो बगैर नहीं होंदा।

जितनी माया तेनू दिती है उतनी धूल है, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मैनू थोड़ी दिती, पर गए थे आपां कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा हुंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधर और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहण वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिर

पुकार जे सुनी सुनी जा सकती है। तेनू ते परमेश्वर ने सोझी दिती है, रसना दिती है, समझण दी सोचण दी शक्ति दिती है, फिर तू क्यों नहीं ओदा सिमरण करदा? कर सिमरण, परमेश्वर तेनू भी मिलेगा।

विष्णु भगवान ने इना दे बंधन कटे, तंदुए नु भी मुक्त किया, इस हाथी नु भी मुक्त किया, के दोनों प्रा होता ते ब्रह्मा। पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं सी, भगती करते सन, पर माया का लालच मन विच हटिया नहीं सी, इसे वास्ते इन्हां नू इतना दुख भोगना पिया। और जब भगवान मिलिया तो फिर मुक्ति नू प्राप्त होया। इसे शब्द धन गुरु रामदास जी जिथे इन्हां दोनों भरावां का जिक्र करते ने कि माया पिछे सराफ दे के दोनों ने जोना पाईया, दुख भोगया, पर फिर सिमरन कीता ते भगवान ने इन्हां दा पार उतारा कीता। इसे शब्द विच सतगुरु जी फरमांदे हन, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे है। भाई इन्हां कथा कहानियां नूं सुन, गुरु दी बाणी ये कथा कहानियां तेनूं दस रही है, इन्हां तू सिख्या लै। झगड़ना फिर माया पिछे झगड़ा, पर माया बड़ी मिठी है। साहब जी फरमांदे ने, पापा बाजो होवे नहीं मोया साथ ना जाई। पापा तो बगैर माया बहुत ही कट्टी नहीं होंदी, ते जद इंसान मरदा है ते ए नाल भी नहीं जांदा। सतगुरु जी फरमा रहे ने, सुन ए बाण, मन विच प्यार रख, जिन्नी भज नठ माया वास्ते करदा है, अगर सिमरन करें ते सिमरन सदका तेरी कमाई विच बरकत पवेगी। ए माया ते कुछ भी नहीं, सिमरन करेगा ते परमेश्वर दी जोत तेरे अंदर जग जाएगी, ओदे नाम दा प्रकाश हो जाएगा, ते फिर तू जिधर भी देखेगा तेनु परमेश्वर नजर आवेगा। इन्हां भगतां दी तरह पर एक बारी तू भी कह उठेगा, ऐ भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी, मैं भी परमेश्वर दी कहानी नूं जान लिया कि ए संसार परमेश्वर दी बनाई हुई खेड है, परमेश्वर दा अमृत दा बगीचा है, ए जीव जंत परमेश्वर दे बनाए हुए ने।

जितने भी इसके छिद्र हैं, छेक हैं, होल्स हैं शरीर दे, उन्हां दे विच्चों अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है। कन चों, अखियां चों, नासकां चों, मुंह चों की निकलता है, अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है, अशुद्ध नहीं है। शुद्ध इसने सिर्फ अपने अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं प्रगट करके ही होना सी, उस तो बिना यह शुद्ध नहीं है। सूची काया हर गुण गाया, हरी दे गुण गाउण नाल ही यह काया सुची हो सकती है, वरना यह सुची नहीं हो सकती। कहंदे ए नापाक है, किथे मंदिर, किथे इसनूं मंदिर वर्गी बना देना सी, ते किथे इसनूं नापाक आख्या है, अपवित्र है। तीसरा नुक्ता, गुरु साहिब आखदे हन ए डरौनी है, ए काया कहंदे

अगर इसनों मंदिर नहीं बनाया तो जो इस दे विच्चों रूह निकल जाएगी कहिंदे यही दुर्लभ डरौनी लगेगी, इसके नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़द्या डर लगेगा, यह डरौनी बन जाएगी। फिर आखते हैं

अगर इस काया दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए काया नू बनाउन वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहिंदे अगर उसनू नहीं ए समझदी ते ए पशु तो प्रेत तो मुगत तो भी बुरी है, प्रेत तो भी बुरी है, पशु तो भी बुरी है। चौथा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन एक काया कमली है, मूर्ख है। कहिंदे हन

0: फिर आखते हैं ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आसा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख ने यह भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन होवे, कल दी रात तेरी आखिरी रात होवे, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल होवे। पर ए आशामा बंदी है बड़िया लंबियां लंबियां, कई बंदे कितनी उन्हां दी उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सैटल पता नहीं कदों होणगे हो। सो कई

लोग सारी उम्र सेटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सेटल इन द ग्रेव, फिर वो सेटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखते हैं ये मूर्ख है, क्योंकि इसने अपनी गलत आदतें बना ली हैं, एडिक्शंस बना ली हैं, स्वभाव बना ले हैं, अते उना चीजा नू वर्तदी है जड़िया चीजा इस नू कमजोर कर दिया हैं। तो कहंदे ए मूर्ख भी है,

अगली गल पंजवन गुरु बाबा जी आखते हैं अगर एक आया मंदिर ना बनी सरोवर ना बनी तो यह फिर दुखां दा घर है या तो यह रब दा घर है नहीं तो फिर यह दुखां दा घर है क्योंकि इस दे विच इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं जो जो कमजोरी आंदी है बुढ़ेपा आंदा है इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं कि इंसान फिर उन्हां दियां दर्दां दे नाल घुलदा घुलदा इस दुनिया दे विचों जांदा है। सब तो ज्यादा पेन जो है इंसान नूं फिर एक काया दिंदी सर्जरी जुंदियां हैं की कुछ हुंदा है कहिंदे हन इह शरीर ही फिर साडा एनिमी बनदा है। बड़ी कमाल दी गल महाराज ने बाणी च लिखी है कि इह शरीर ही अगर नाम नहीं जपया फिर साडा एनिमी बनदा है साडा विरोधी बनदा है। बाणी च आखदे हन इस तरह कहिंदे हन

जितने रस शरीर के तेते लगे दुख उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर यह सरोवर ना बनिया, अगर इसनु असी दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनु रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया तो इसने तुहानु दुखी भी बहुत करना, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनु कोई शेयर नहीं कर सकता, वो दुख तुहानु खुद अपने आप चलना पैना। ए दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवा, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच ते बहुत ही चोट वाली गल करदे हन, कहिंदे हन ए वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है, अते आखदे हन पंक्ति दे

सगल शरीर आवत संपान, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वह मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आदि हैं, कईयां दी दवाइयां बनदियां हैं, कईयां दी स्किन साडे उत्ते पहनने दे योग हुंदी है, असीं पहन लैने हां। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन नूं उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकती है। कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसी ना किसी काम आ जांदे हन मरण तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी, उसकी स्किन भी काम आती। लेकिन इंसान का शरीर ऐसा है जरा किसी काम नहीं आता। निफल मानुख, ए मानुख का शरीर जरा बिल्कुल निष्फल जाता है। बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन का। अगर ओ नहीं किया तो कहते निफल मानुख जपे नहीं नाम, ए बिल्कुल निष्फल हो गया। तो इसके सारे गुण जो हैं वो गल गए। एक दफा इस पंक्ति में सुनो अते नाले अपने अपने अंदर इसनू रिफ्लैक्ट करो अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इसके नाल सहमत हाँ, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजिही, कि मेरी ही जिंदगी अजिही ते नहीं। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕ ਤ੍ਰਿਕ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਕ ਤ੍ਰਿਕ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਕ ਤ੍ਰਿਕ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਕ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਤ੍ਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नूं इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठावा।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं, सुनो किमें गले हैं। कहते हैं

इस सन्यासी पिता मेहता का लून ऐ बाल के तुहाडा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच गृहस्थी होवोगे, फिर तुहाडे घर ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इना दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान हुए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, एक एहो जिहा सुपना है, ए ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ए नानक मेरे तप दा फल है कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी, जो मैं ए पारी तप कीते उस तप दा फल, मेरी अरदास दा फल, जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया। उठ के खड़े हुए अपने आप नूं कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे, धन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे, ते की देखते धन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा पर प्रकाश है, मंजे ते सतगुर लत्था लमका के बैठे हैं, चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता, इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषां दे नाल भरे है। मंगला चरण दे गीत

पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर दिया दे रहे ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नु गल दे नाल लगाया ते नाले ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है।

अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, कोई समझ लैन उन्हां दा दान पुन भी सफल नहीं होता। जेड़े माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हां दा कीता होया दान पुन तीर्थ यात्रा पाठ पूजा भी सफल नहीं होती।

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे हां एक मां बाप अठ धियां पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद ओही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धियां पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जदों बच्चे वड्डे हो जाते ने ओ फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धियां पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

और माता पिता ये जरूर कहना चाहवांगे कि जब बच्चे छोटे होंदे जिथे उन्हां नूं चंगा खाना देंदे हो चंगा कपड़ा देने की कोशिश करते हो चंगी तो चंगी विद्या

प्यारा लिखा है, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, बाहें जना दी पकड़ी है, सिर दीजै बाहें ना छोटी है। असी जकारा बुलावांगे, तुसी सारे ने उच्ची वांग करनी है, सच्चे पातशाह साडी वांग।

0: नीच कुलह।
1: कबीर जी जात दे जुलाए सन, हजूर बाणी विच बख्शिश करदे हन के जदों नाम दी कमाई कीती तां गुणा दे खजाने बन गए।

मरे हुए टोर टोन वाला जदों नाम दी कमाई कीती, नाम दा आसरा लिया तां संसार आके चुकिया। राजे महाराजे आके चुके,

जितनी भी तारीफ जितनी भी उपमा कीती गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी अखी नजारे देखे। एक दिन दा जिक्र है हजूर दीवान दे विच सुशोभित हन हरि कीर्तन विच संगतां गड़ुच होईयां गुरु चरणां विच जुड़ियां अमृत रस कीर्तन सरवन करके अपना जीवन सफल कर रही हैं। एक प्रेमी आया मत्था टेकिया चट बार चला गया। थोड़ी देर बाद फिर सत्संगत दिया दलीजा टप के अंदर आया फिर मुड़ गया। हजूर ने मेवड़े सिख नू भेज के इस प्रेमी नू बुलवाया। कीर्तन की समाप्ति तो उपरांत हजूर पुछन लगे भाई प्रेमिया तू सत संगत विच बहना चाहुंदा सै बैठ नहीं सी रहा इसका की कारण है। ता इस प्रेमी दे नैन कटोरे भर आए हाथ जोड़ के बेनती कीती ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते जिस दरबार विच ऐसे महापुरख गुरु के सिख अजप्पा जाप करन वाले श्वास श्वास सिमरन करन वाले फिर तेरे एक इशारे ते अपना सब कुछ वार देन वाले गुर सिख जुड़े बैठे होन उत्थे मेरे वर्गे पापी नू भी था है। मैं तो बड़ी नीच जाति दा हां। आख्या तू किस जाति दा है गरीब निवाज सानू लोग कलाल कहिंदे हैं। हजूर ने इस प्रेमी नू अपने गल नाल ला के आख्या के जो गुरु नानक दे दरबार विच आ जांदा है ओ कलाल नहीं रहिंदा ओ तां गुरु का लाल बन जांदा है। उच्चारण करो श्री वाहे। जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवे तां निर्मल होई। भाई साहब ए नजारा अखी देख रहे सन ते फिर आपने लिखिया के कादरे हरकार गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह। ए है हर दी वड्याई हरि दी वड्याई हर की वड्याई देखो संतो हर निमाणिया।

0: राम राजे।
1: गुरु अंगद देव महाराज हुन गुरु नानक दी महिमा सुनी खिच पई मन दे विच। जिन्हां दे नाल कोई रिश्ता जोड़ना हुंदा भाई, कोई कारण बन जांदा है, अच्छे अच्छे लगन लग जांदे ने, वो चंगे चंगे लगन लग जांदे हन। सो सात संगत, जिस रब दे प्यारे नाल साडा संबंध होएगा, सानू दुनिया सारी दुनिया दे विचों चंगा लगेगा। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: सो सात संगत, हुण गुरु अंगद देव महाराज जी कहिंदे हन भाई तुसीं इत्थे बैठो, मैं गुरु नानक दे फकीर है, साधु है, मैं दर्शन करे आवां, जरा मत्था टेक आवां, क्योंकि बचपन तो ख्याल तां धार्मिक ने। हुण साध संग गुरु अंतरजामी है, बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: वो जानदा कौन जग्यासु है। धन गुरु नानक, बोलो धन गुरु।
0: धन
1: देख रहे हैं अंदरले नैणा दे नाल के महा जग्यासु आ रहा है, जिसकी परबल कमाई इतनी है, जन्मां जन्मांतरां दी इकट्ठी होई होई। ते साध संगत, गुरु अंगद देव महाराज घोड़ी ते सवार होके जा रहे हैं, अगों गुरु नानक जी इसे तरह ही आ रहे हैं। स्थान तो डेरे तो बाहर आके खलो गए। गुरु अंगद देव महाराज भोले भा पुछते हैं गुरु नानक जी नूं कि इत्थे गुरु नानक का डेरा कित्थे है, गुरु नानक का स्थान कित्थे है। गुरु धन गुरु नानक जी कहिंदे हन, पुरशा साडे मगर मगर आ जा, तैन गुरु नानक दे दर्शन हो जाणगे। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: साडे मगर मगर आ जा, तैन गुरु नानक दे दर्शन हो जाणगे। गुरु नानक जी अगे अगे तुरे जाते हैं, तो गुरु अंगद देव जी भाई लैणा जिन्हों का नाम से उस समय घोड़ी ते चढ़े हुए मगर मगर जाते हैं। सतगुरु जी कहिंदे हन, घोड़ा इत्थे बन दिओ जां घोड़ी इत्थे बन दिओ, ते अंदर चले जाओ, तुहानू दर्शन गुरु महाराज दूसरे रास्ते राही गए, पंछना न कीता, आके गुरगद्दी ते विराजमान हो गए। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: होर जितने भी दर्शन अधिकारी सन सारे बैठ गए, भाई लैणा जी भी गए, जदों देखिया यह तो उही स्वरूप है जो मैनू लेके आया है, मन विच बड़ी शर्मिंदगी हो। देखो मैं घोड़ी ते चढ़िया आया हाँ, ते ए किड्डे वड्डे महापुरश ए तुरे आए हैं, इन्हां ने अपना आपा भी जनाया नहीं है। बोलो
0: सतनाम श्री
1: वाहिगुरु। संत बाबा अजीत सिंह जी नसल पर वाले ब्रह्म ज्ञानी सन, उन्हां दे दर्शन करने वास्ते एक राजा गया। दर्शन करने वास्ते एक राजा जाता है, महापुरश की करते हैं, महापुरश हल वाह रहे ने। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: महापुरश हल वाह रहे हैं, ते किसे नूं पुछया, राजा पुछदा भी संत बाबा अजीत सिंह जी का डेरा कित्थे है। उन्होंने कहा ओ सामने चलिया जा, अगे चलिया गया, अगे महापुरश हल वाह रहे हैं, ते राजा महापुरशां नूं पुछता है कि बजुर्गो इत्थे संत बाबा अजीत सिंह जी का डेरा कित्था है, संत बाबा अजीत सिंह जी कित्थे हैं। महापुरश कहन लगे भाई जीता जीता तो मैंने भी कहते होंगे ने, संतां दा तां नहीं मैनूं पता, जीता जीता तो वैसे मैनूं भी लोग कहिंदे हुंदे ने। राजा सोचदा ला मैं तुहाडी गल थोड़ा ही करदा हाँ, भाई जीता जीता तो मैनूं भी कहिंदे हुंदे ने, ते महापुरशां दा किसे होर नूं पुछ ला। सो साध संगत किसे होर नूं पुछदा भाई महापुरशां दे दर्शन करन, कहिंदे महापुरशां कोल तां खड़ा गल्लां करदा सी। कहिंदे किहड़े महापुरश, कहिंदे हाल तां बाहर रहे ने, कहिंदे ओह महापुरश ने, कहिंदे तो मैनूं इंज कहिंदे सी। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: क्योंकि बाणी दसदी है

0: जिन हर पाया तिना छपाया, छिपे रहन की चाहत छिप टुर जान दी, पर यह पूरी हुंदी ना मैं तरले लै रहा। सात संगत खुशबू फुल दा पता दे दिंदी है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: खुशबू किस फुल किसे नूं नहीं कहिंदा है, ना फुल किसे नूं दसन जांदा है, ना फुल किसे नूं सददा है। फुल दी खुशबू ते सात संगत राही नूं सात संगत खुशबू तो उसका पता लगता है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हो नजीक खुदाए का भेद ना किसा दे। हुण मन दे विच बड़ी शर्मिंदगी आई भाई लैण दे कि मैं घोड़ी ते चढ़िया आया ते गुरु जी ने अपना आपा तक नहीं जनाया, ये तुरे आए, ये तो कितनी बेअदबी है। अंतरजमी सतगुरु जी कहिंदे हन भाई पुरशा, बेनती भी करते हैं महाराज मेथों किड्डी बेअदबी होई, मैथों किड्डी बेअदबी होई, तेरा नां की है जी लैणा। गुरु जी कहिंदे कोई नहीं, लैण वाले घोड़ियां ते चढ़ के आया करदे। रमज दत्ती लैण वाले ओ राज नहीं देंदे, रमज देंदे ने। लैण वाले घोड़ियां ते चढ़ के आया करदे ने, इस करके तू मन दे विच कोई चिंता ना कर, त्याग दे मन दे फुरने नूं। फिर सात संगत हुण दर्शन करके ऐसा मन जिवें मच्छी पानी दे विच लीन हो जांदी है, गुरु दे दर्शनां दे विच ही लीन हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। दूजे पासे लभदे लभदे साथी आए, बई जाना है इत्थे ही बैठ गए। कहिंदे हां बस जिथे जाना सी चले गए, जिथे पहुंचना सी पहुंच गए, बोलो सतनाम।